যতু দেশ কাশ আমি মৈ মূর্খ কর না যাই, কৃপা করো দিন কে দাতে মেরা গুণ অবগুণ না বিচারো কোই, মাটি কা ক্যা তুপ স্বামী মানুষ কি গত এগি, মাটি কা ক্যা তুপ স্বামী মানুষ কি গত এগি। পরম সম্মান যোগ শব্দ গুরু সাহিব শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিব মহারাজ জি দি পাবন পবিত্র হজুরি অন্দর শোভায় মান খোয়ে বেঠে গুরমুখ প্যারে সত সঙ্গী জনো, উস অকাল পুরখ ওয়াহেগুরু জি দি কৃপা সদকা ধন গুরু গ্রন্থ সাহেব মহারাজ জি দি প্রেরণা দা সদকা আজ দা এ কথা দরবার আয়োজিত কীতা গিয়া। আপ জি নে সিখ কৌম দে মহান বিদ্বান সিং সাহেব গিয়ানী জসবন্ত সিং জি পরওয়ানা উনা পাসো গুরমত বিচারা সতগুরু জি দে খালসা পন্থ দে খালসে দে ও দিন জদো ও জঙ্গলা বিচ পাঁয়ে পত্তে খা কে জঙ্গলা দে কান্দ মূল খা কে গুজারা করদে রে, সিখি দে কীরে নু ওনা নে সাম কে রখেয়া। আও আপনে সময় অন্দর রহ কে হি জিতনি তু সুজ ধন গুরু গ্রন্থ সাহেব জি কৃপা করকে বখশনগে, সতগুরু গুরু গ্রন্থ সাহেব জি দি টেক লেগে, আপ সমূহ মাই ভাই কৃপা করকে একাগ্রতা বখশো, হজুর দে অমৃত দি আপা বিচার করনি, ধন গুরু গ্রন্থ সাহেব করম কৃপা আপ মেহর করকে দাতা বিচ বরতে, গুরু বখশি ফতেহ প্রবান করো জি। ওয়াহেগুরু জি কা খালসা ওয়াহেগুরু জি কি ফতেহ। আপ জি নে গুরমুখা পাসো সতগুরু গুরু গোবিন্দ সিং মহারাজ জি নে যো খন্ডে বাটে দি পৌল সিখা নু দিতি তে নাল খালসা পদ নাল সুশোভিত কীতা মেরে গুরদেব নে, আপনি শ্রবণ কীতা সতগুরু গুরু গ্রন্থ সাহেব মহারাজ জি দি পাবন পবিত্র বাণী দে আধার তে যো ভী রহিত গুরু গোবিন্দ সিং মহারাজ জি নে সানু বখশিশ কীতি হ্যায়, এস রহিত দা আধার ধন গুরু গ্রন্থ সাহেব জি দি বাণী। সতগুরু গুরু গ্রন্থ সাহেব মহারাজ জি দি বাণী অন্দর অমৃত দা জিক্র বেঅন্ত বারী আয়ে, তে সাহেব জি নে অমৃত দা যদো জিক্র কীতা তে গুরু গ্রন্থ সাহেব দি বাণী অন্দর অমৃত দে অর্থ ভী বখ বখ নে। সতগুরু গুরু গ্রন্থ সাহেব দি বাণী বিচো গুরদেব দে যদো সি বচন পড়নে হ্যাঁ খন্ডে বাটে দে অমৃত দি আপা আউনা, সতগুরু গুরু গ্রন্থ সাহেব দি বাণী অন্দর গুরদেব নে বেঅন্ত বচন অমৃত দে সম্বন্ধ বিচ কহে, আসি পড়নে হ্যাঁ গুরদেব জি দা বচন সাহেব কিন্দনে সব রস মিঠা মনে অমৃত দে সম্বন্ধী সুনে সা লোনে, খট তুরসি মুখ বোলনা মারন নাদ কিয়ে, আগে সাহেব কিন্দনে ছত্তি অমৃত ভাও এক যা কো নদর করে, এথে অমৃত দা অর্থ কেবল সবাদলা ভোজন বখ বখ অর্থাঁ বিচ আয়ে, কে লগে ছত্তি অমৃত ভাও এক যা কো নদর করে। ধন গুরু গ্রন্থ সাহেব দি বাণী দূসরা প্রমাণ সাহেব কিন্দনে যে প্রসাদ ছত্তি অমৃত খায়ে তিস ঠাকুর কো রাখ মন মাহে, ওথে ভী অমৃত দা অর্থ সবাদলে ভোজন। সাহেব নে বাণী বিচ ইক প্রমাণ দিতা কে লগে এক মাসাহারী
एक तृण खाए इकना छत्ती अमृत पाए। उथे भी अमृत का अर्थ गुरुदेव ने स्वादिष्ट भोजन किया। खजूर की बाणी पढ़ते हैं, साहब ने अमृत के संबंधी मैं अर्थ करा, नाल एक बचन किया दुध लई भी गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द अमृत वरते। साहब की बाणी का बचन आता है, कह लगे पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावें अमृत दे। उथे भी जिक्र दुध की थां ते भी अमृत शब्द वरत्या। साहब की बाणी पढ़द्या महाराज जी ने कृपा करके बचन किया ते चंदन की भी अमृत नाल तुलना की। कह लगे मैला अगर बेरे है भुयंगा बिख अमृत बस है एक संगा। उथे चंदन नू अमृत ते चंदन नू एक बराबरता दे दी। साहब की बाणी पढ़दी खजूर ने बचन किया, कह लगे सोन कटोरी अमृत भरी लैना मैं हर आगै धरी। उथे भी साहब ने शब्द अमृत वरत्या दुध की थां ते। खैर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच अमृत स्वादिष्ट भोजन नू भी कहे, अमृत दुध नू भी कहे। हजूर की बाणी विच चंदन की गल करद्या भी अमृत शब्द वरत्या। सतगुरु की बाणी पढ़द्या एक बचन आया, कह लगे अमृत काया रहे सुखाली बाजी ए संसारो। उथे काया नू अमृत नाल साहब ने दोनों इकट्ठिया कर दिता। कह लगे अमृत काया रहे सुखाली, इथे अमृत का अर्थ दुध नहीं, इथे अमृत का अर्थ स्वादिष्ट भोजन नहीं, इथे अमृत का अर्थ अपने आप नू अमर जानन वाला। अमृत काया रहे सुखाली, हजूर की बाणी पढ़द्या साहब ने बाणी नू भी अमृत किया। कह लगे हे मेरे मालिक जी अमृत अमृत तेरी बाणिया तेरे भगतां हृदय समाणिया। साहब ने बाणी नू अमृत किया, कह लगे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो वै परम गत मेरी। कह लगे हमारी प्यारी अमृत धारी बाणी नू क्या अमृत नाल भरपूर है, हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख ना मनते तारी रे। साहब ने क्या बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ये ते सारे दर ते कुछ संभाल करे विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। कह साहब ने बाणी विच बचन किया, कह लगे प्यारिया के बाणी ने भी शब्द अमृत वरत्या। मैं आना के खंडे बाटे दी पौल क्यों जरूरी है। सतगुरु ने दुध लई अमृत शब्द, चंदन लई अमृत शब्द, बाणी वास्ते अमृत शब्द, ते जदों नाम की गल की उदों भी साहब ने कहा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिला रस खाए। उथे नाम नूं गुरुदेव ने अमृत किया। साहब की बाणी पढ़ने अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई शब्द नाम लई अमृत वरत्या। हजूर ते पवित्र बचन बड़े, कहन लगे मेरे मालिक जी तेरा नाम भी अमृत है। गुरुदेव दे पवित्र बचन आंदे ने हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखत जग सारा गुर प्रसाद कहे जन भीखण पावो मोख द्वारा। उथे नाम नू अमृत किया। साहब का बचन आंदा है हजूर कहिंदे ने हौं वार ढाडी बेकार कारै लाया रात दह कै वार धुरों पुरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा आया। कहन लगे प्यारिया पर चेते रखी सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया। उथे नाम नू फिर अमृत किया। खैर सतगुरु की बाणी पढ़द्या जिथे बाणी नू अमृत किया नाम नू अमृत किया उथे गुरु रामदास ने बचन किया। कहन लगे गुर अमृत भिन्नी दोहरी अमृत गुर कै राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया पाया अमृत छक छके। सतगुरु की बाणी पढ़द्या नाम अमृत बाणी नू अमृत दुध नू अमृत चंदन की थां ते भी अमृत शब्द वरत्या। ते जदों साहब के बचन पढ़े ते नाल ए भी कह दिता, कहन लगे नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। साहब ने बाणी विच बचन किया, कहन लगे जिन मटियाई तेरे नाम की ते रते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। फिर शब्द उथे अमृत वरत्या, कह दिता कि केवल एक अमृत नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। साहब की बाणी पढ़द्या कह लगे नानक अमृत मन माहे पाइए गुर प्रसाद तेरे अंदर अमृत है। सतगुरु की पवित्र बाणी पढ़द्या साहब कह लगे तेरे अंदर नाम है तेरे अंदर अमृत है। ते दूसरे पासे जदों बाणी पढ़ी ते नाल एक बचन होर कह दिता, कहन लगे मन रे ठिर रहो
मत कत जाई जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, घर अमृत घट माही जियो, तेरे अंदर अमृत है। सतगुरु की बाणी पढ़द्या फिर एक होर प्रमाण मिले, कह लगे अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मनतानी। गुरु ने अमृत दिता, डिगै ना डोल है, दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। साहब दे बचन पढ़े, कह लगे गुर पूरा मेरी रात लई, कह लगे अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। साहब का बचन पढ़िया, कह लगे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, जिस जलनिध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। खैर मैं सिर्फ संखेप मात्र कुछ प्रमाण अर्ज कीते ने। साहब ने नाम नू अमृत कहा, बाणी नू अमृत कहा, गुरदेव ने बख्शिश की, साहब ने दुध लई भी शब्द अमृत वरत्या, काया नाल भी शब्द अमृत वरत्या। ते कुदरती तौर ते सवाल उपजेगा, जे हर एक दे अंदर अमृत है, साहब ने तो मनमुख तक भी शब्द वरत के कह दिता, कह लगे घर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने प्रेम भरम दा भरम पुला। इहदा मतलब उहदे अंदर भी कोई परमेश्वर की दात है, जे अंदर अमृत है, बाणी अमृत है, फिर सतगुरु ने सानू खंडे बाटे का अमृत दिता। ते कुदरती तौर ते पुछांगे यह क्यों, ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब ने इहदा उत्तर बड़े कमाल का दिता है। कहन लगे सजना मेरे सतगुरु ने तेरे अंदरों उस अमृत का प्रवाह चलाना है, जेड़ा अमृत तेरे अंदर मौजूद ही, पर उस अमृत का प्रवाह उन्नी देर तक नहीं चलना जिन्नी देर तक तू सतगुरु की कृपा नहीं लै लेंगे, सतगुरु तो अमृत की दात नहीं लेंदा। साहब ने बाणी विच भी प्रमाण दिते, कह लगे लक्कड़ विच आगे जेड़ी आपां लक्कड़ घर विच वरतने आ, जिस मंजे ते आराम करने आ, उस लक्कड़ विच भी आगे, खिड़कियां दरवाजे घरां जेड़े लकड़ां नाल बने ने उन्हां विच भी आगे, पर कदी वह अग प्रगट नहीं हुई, लक्कड़ विच अग मौजूद है। पर साहब कहिंदे ने प्यारिया जे उस अग नूं प्रगट करनी ते एक गल चेते रखी, लक्कड़ दी गुप्त अग प्रगट तां होवेगी जे तू उहनूं बाहर कोई अग दी चिणग लाएगा, नहीं तो अग प्रगट किवें हो जानी। तेरे अंदर नाम का अमृत जल साहब ने कह, पर उन्हें प्रगट तां होना ही जदों तू गुरु तो खंडे ते अमृत की दात लएगा, परत के अमृतमय बाणी नाल जुड़ेगा, फिर देखी तेरे अंदरों वह अमृत का प्रवाह चलेगा। साहब ने एक बाणी विच प्रमाण होर दिता, सतगुरु गुरु नानक साहब के बचन असी रोज पढ़ने, सचखंड तक आ के 37 पौड़ियां संपूर्ण हो जांदियां ने, जिहड़ी 78वीं पौड़ी साहब ने उहदे विच भी गल अमृत की कीती। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे ने जे अंदर ते अमृत तक पहुंचना चाहना ते गुरु के सिखा तैनू अपना जीवन कमाना पएगा। जिहड़ी रहत गुरदेव ने दसी के चेते रखी, पर बेटी को पेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री सो रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। ते गुरुदेव ने पहली गल ये कही, कह लगे सजना अपने आचरण नू तू उच्चा कर, जे अंदरों अमृत का स्वाद चखनी ते गुरु की कृपा लैके। एक सुनहरे की उदाहरण दे दी, कह लगे वह सोने नू ढालद, उहदे कोल केड़ियां केड़ियां चीजां ने कदी ध्यान नाल तके। साहब कह लगे जत पहारा, पहारा का अर्थ सिख विद्वाना ने किया, वह दुकान जिथे बैठ के सोना ढालिया जाने। जे अंदर ते अमृत नू लैने ते पहला अपने आचरण नू उच्चा बना, जत पहारा धीरज सुनियार, कमाई करनी आ अंदर टिका रखी, तेरे अंदर धीरज होवे जीवन नू कमाने ते गुरु ते बचना ते, धीरज नाल सबर नाल टेक के बैठा रही। कदी तक सोने घड़न वाले वल, वह निक्की निक्की सूक्ष्म जी कला नाल जदों गहने घड़द, ते किन्ना किन्ना समा वह धीरज नाल टिकया रहिंदा। कह लगे अपने अंदर धीरज नू तू सुनार बना, जत पहारा धीरज सुनियार, ते जिथे सोना घड़िया जांदा वह कोल ऐरन पिया, ऐरन मत अपनी मत नू ऐरन बना, वेद हथियार गुरु ते बख्शे ज्ञान नू हथौड़ा बना, तेरे कुल शब्द गुरु दा ज्ञान होवे ए हथौड़ा होवे। जत पहारा धीरे सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, पाओ खला वाहगुरु जी दे अदब नू, सजना तू ओ धोक नहीं बना जिदे नाल ओ अग नू फूक मारदा पिया, पाओ खला अगन तपताओ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਜਣਾ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਜਣਾ ਆਹ ਦੁੱਧ ਦੇਖ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਟੇਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾਈ, ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਗਾ ਨਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਬੈਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਹ ਵਿੱਚ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਏ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਐ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਸੇ ਜਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਦਾ,
नेत्र जदों टिकांदे ने अमृत जल ते उदों भी गुरु वरदा है ते जदों अमृत दी दात प्राणियां नूं देंदे ने ते उन्हां पंजां विचों गुरु वरत के उन्हां प्राणियां दे अंदर भी अमृत दी चढ़ी ला दिंदे। पंजां अंदर सतगुरु वरदा है। मेरे गुरुदेव ने अमृत दी दात दित्ती। आपां सुणिया कि शब्द दे दिता खालसा। मैं अर्ज करां मेरे सतगुरु ने जदों अमृत दी दात दित्ती गुरमुख कह रहे सन कि सुखी बसा मोरो परिवारा। सिख विद्वाना ने कोशिश की अपने अपने ढंग नाल कलगी वारे की उपमा की। जदों चमकौर की गड़ी में तकीए इधर सतगुरु अमृत का दाता अपने पुत्र कुर्बान करता है ते जिन्ना ने अमृत पान किया है उस पंथ लई की मंगता पे है ते उधर जिन्हें अमृत की दात लई जितन ओदा पुत्र कुर्बान होंदा गुरु नूं शरदा दे फुल की हो जाए भेट कर दे। मैं दो प्रमाण देने ने। बड़ा गुरमुख प्यारा ढाडी विद्वान होया सोहन सिंह जी शीतल उन्हां तो सिख कौम का बच्चा बच्चा जाणू। वह कहिंदा चमकौर की गढ़ी विच जदों मेरे सतगुरु के छोटा साहबजादा बाबा जुझार सिंह भी शहीद हो गया फिर उस ढाडी के अंदर की उडारी है उन्हें अपनी कलम के नाल कुछ काम पंक्तियां कही ते जो कुछ उन्हें गुरु कलगी वाले दे मुख तो इस खालसा पंथ लई कढ़ा दिता वह शब्द जद सुने हर एक दा हिरदा बैराग दे नाल पिज जांदा। आम तौर पर एक पंक्ति असी वरतने आ कहिंदे ने सामने मेरे सतगुरु नूं दिसदा है कि पुत्र जुझार सिंह शहीद हो गया ते चमकौर की गड़ी विच बैठा मेरा दशमेश बापू बड़े प्रेम नाल भिज के कहिंदे ने हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सामे हो गया वह बेरा बेरा। उन्हां शब्द टुकड़ा टुकड़ा वरते है। खैर ये ढाडी दे कवि दे अंदर दी भी उडारी है हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सामे हो गया वह बेरा बेरा। कहन लगे उंगली ला के लै गया उन्हूं वीर वडेरा ते सतगुरु महाराज कहन लगे जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा। हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा। ते एक शब्द वरत्या उस दिन चमकौर दी गड़ी विच पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक रिया। इत्थे उन्हां ने पंक्ति वरती जदों कह दिता कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक नेरा। जदों इधर तकने आ गुरु गोबिंद सिंह अमृत दा दाता है उहदे पुत्र शहीद हुंदे ने ते कहिंदे ने पंथ वसदा रहे मैनू उजाड़ा परवाने। ते जदों लाहौर की धरती नूं तकने आ जिन्हां नूं सतगुरु तू अमृत की दात दे गया ते जितन उन्हां ते समा बनिया उन्हां अमृत पीण वाले गुरसिखां ने शरदा दे फुल भेट कीते। शबेक सिंह दे सामने उहदा इकलौता इकलौता पुत्र शाबाश सिंह टिकिया। जालम ने प्यो ते पुत्र नूं गिरफ्तार कीता है। रतन सिंह भंगू लिखदा है उस वक्त आया काजी हाकम आया उन्हें एक गल की शबेक सिंह कुछ होश वाल झाती मार कुछ होश नूं हथ मार देख सजना लोग पुत्रां नूं तरसदे ने दर दर ते जांदे ने पुत्रां दी दात मंगण लई तैनू निरंकार ने उस खुदा ने जे एक पुत्र दिता इनू बचा लै ते पुत्र बच सकदे जे तू इस्लाम नूं कबूल करे। सतगुरु ते पुत्र जांदे ने कहिंदे ने पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ते जदों शबेक सिंह दे सामने समा आउंदा अपने पुत्र नूं बचा लै ते अगो वह बड़े शब्द प्यार दे कहिंदा आखदा वह काजी तैनू केवल अखां नाल ए संसार दिसदा पे है तू ऐस दिस दे दृष्टमान संसार तक सीमत है पर कहिंदा मैनू एदे पिछे कुछ होर भी नजर आउंदा पे। पुछया तैनू की होर दिसदा ते अगो उन्हें शब्द बड़े प्यारे कहे कहन लगा तेनू पता नहीं तू कहना एक पुत्र नूं बचा लै ते जदों मैं एक पुत्र नूं बचा के रब दे घर नूं गया ते रतन सिंह भंगू लिखदे ने अगो आवाज आएगी शबेक सिंह मैं चार कुर्बान करके कहा सी के पंथ वसे तू एक दी खातर थिड़ गयो। देखो उन्हें की हो जाए शरदा दे फुल पेट कीते। रतन सिंह भंगू लिखदा है कहन लगे सिखन काज गुरु हमारे शीश दियो नी सन परवारे चारे पुत्र जान कुहाए सो चंडी की भेट कराए। कहन लगे हम कारण गुर कुल गवाई हम कुल राख है कमल विड़ाई। साडी खातर साहब ने इना कुछ कुर्बान कर दिता ते मैं अपने आप नू बचा के लै जा प्यारियो।
उस कलगी वाले ने जड़ी अमृत की दात दिती, ये केवल कर्म कांड नहीं, पंजां विच सतगुरु वरतद है बाणी रूप। जदों वह गुरु की बाणी भिज के पढ़ते ने ओही जल अमृत बन जाता है। जदों वह जल सिख दे खिरदे भी जाता है, अंदर नूं भी धो दिंदा है। जे नाल कमाई करिए पै वैसे रहत नामे विच एक शब्द उन्हां कहा, कहन लगे प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल छके। उन्होंने प्रथम रहत शब्द वरत्या, इहदा मतलब हर सिख लई लाजमी है, जिन्हें जीवन कमाना है उहदे लई प्रथम रहत शब्द वरत्या रहत नामे वाले गुरसिखां ने। कहन लगे उन्हां पंजां तों जदों अमृत लएगा अंदर भी गुरु किरपा करेगा, नेत्रां नूं भी गुरु किरपा करके स्वच्छता बख्शेगा, तेरे शीश भी जदों निपया अमृत ते जेड़े बचन तू पढ़ना गगन दमामा बाजियो परयो निशाना कहो, उत्थे गुरु की रहमत वरतेगी। साहब ने कृपा करके अमृत आप पान किया, गुरसिखा नूं अमृत की दात दिती। मैं एक बेनती करके समाप्ति करना, प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक शब्द बड़ा प्यारा वरते, असी अपने अपने ढंग नाल खालसे की परिभाषा संगत सामने रखने हैं। कहिंदे ने जदों मेरे गुरदेव एकाग्रता बख्शना दमदमा साहब की धरती ते पहुंचे ने ना, ते भाई डल्ले ने रज के सेवा की, भावा सूबा सरहंद ने अपने वालों किन्ना डरावा भी दिता है, पर कहिंदे ने तां भी वह गुरु कलगी वाले के चरणों का भवरा बनिया रहा है। एक दिन बैठिया अचनचेत एकाग्रता बख्शिया दे थोड़ी जी, एक दिन बैठिया अचनचेत भाई डल्ले का जदों ये पता लगा कि सूबे सरहंद की धमकी की भी इन्हें परवाह नहीं की, ते हजूर ने हस के कहा डलिया जो कुछ तू मंगेगा मैं तेरी झोली विच पा देंगा, कुछ मंग तो सही। ते डल्ले ने एक बेनती की, दातिया जे तुरथ है ते कृपा कर अपने चरणों विच पीड़ी जिनी थां दे दे। साहब उस वक्त सोची पै गए

कुजड़ा सैको हाथियों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निघी गोत आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप सरवण करदे आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। अज जो भगत फरीद साहब जी दे सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, इन्हां सलोकां विचों पहला सलोक फरीदा जान लब तां नहों क्या, लब तां कूड़ा नहों।

गुरु प्रभु तुम मरे शिष्य राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी जित

इन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवे वाहे गुरु साहिब जीयो फरीदा दर दरवेशी काखड़ी चला दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत फरीदा दर दरवेशी गखड़ी चला दुनिया पत

तेरे जीवन दे असर नू पा के लोग कहणगे बड़ा चंगा है, पर नतीजा उल्टा निकलदा नजर आ रहा है। जद लोग दूरों वेखदे ने ते दिसदा है कि बड़ा चंगा है, ते जद लोग तेरे नेड़े होके तेनू वेखदे ने नजर आ जांदा है चंगा नहीं है। परम सी भुलेखा सी जो उड गया है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी दा एक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चला। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक जिमीदार दी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कहन लगे अनिक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे एक जिमीदार दे खेत सन बहुते, उन्हें कई खेतां दे अंदर बीज बीज दिता, कणक दा बीज, दूजा तीजा बीज, फसलां फुल्लां फलां दे बीज उन्हें अपने कई खेतां दे अंदर बीज दिते। होया कि जिमीदार ने वेख्या कि मेरे बीजे हुए बीज नूं कबूतर चुगदे ने, कां चुगदे ने, चिड़ियां चुगदियां ने, परिंदे आउंदे ने, बीज चुकदे ने, उडारी भर जांदे ने, ते मैं इकल्ला, खेत बहुते ने, इन्हां खेतां दी रखवाली करां ते किवें करां। जिमीदार दे हिरदे दे अंदरों एक तजवीज दा जन्म होया, उहदे अंदरों एक सोच दा जन्म होया। उन्हें कखां कानां दा पुतला बनाया, का फूस इकट्ठा करके ना उन्हें पुतला बनाया, ते उस पुतले दा सिर भी बनाया, उस पुतले दियां बाहां भी बनाईयां, उस पुतले दियां लत्तां भी बनाईयां, ते फिर कीता कि उस पुतले दे सिर दे उत्ते ना एक कपड़ा भी रख दिता, उस पुतले नूं एक फटिया पुराना कमीज चोला भी पवा दिता, उस पुतले नूं गड़ दिता एक खेत दे दरम्यान जाके। और सोच ए काम कर रही सी कि जेड़ियां चिड़ियां कां कबूतर ने परिंदे ने इन्हां नूं इस गल दा भुलेखा बनिया रहे कि खेत दा मालक जिमीदार खेत दे अंदर है, असीं दाणा चुगांगे, ए सानू मारेगा, असीं दाणा चुगण वास्ते जाना नहीं, ए डरदे डरदे परां परां ही उडारी भर के चले जाण, नेड़े आउणी ना। होया ए कि चिड़ियां कां कबूतर डरदे रहे, उस पुतले नूं वेख के भय खांदे रहे, ते दाणा चुगण वास्ते ना आए। हुण कां बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक परिंदा है कां, और बड़ा सियाणा है। आखर हवा दा एक बुल्ला आया, तेज हवा दा झोंका आया, उस हवा दे नाल पुतला जमीन दे उत्ते डिग पिया, उहदे जिहड़े पाए हुए कपड़े सन उह वी उड गए, उहदे जिहड़े बने हुए बनावटी अंग सन उह वी बिखर गए, ते उह जिहड़ा कां सी ना मैले वाली चुंझ उस पुतले दे उत्ते बह के सवारनी शुरू कर दिंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने वचन फरमाया, कहन लगे ओ बंदे जिन्हां दे कोल केवल लिबास है, पहरावा है, अंदर धर्म दी जोत नहीं जग रही, कहन लगे उस पुतले तो वध कुछ भी नहीं है। जिवें ओ पुतला बेजान है, है ता पुतला पर बेजान है, उहदे अंदर जान नहीं, सवास नहीं चल रहा, उहनां दे नाड़ां दे अंदर खून गर्दश नहीं कर रहा, उहदे अंदर दिल दी धड़कन जारी नहीं है, ओ मुर्दा निर्जीव पुतला है। कहन लगे जिस मनुख ने बाहरों केवल लिबास पाया है, पहरावा सजाया है, पर उहदे अंदर धर्म दी जोत नहीं जगदी, बाणी दा असर नहीं, बाणी दा सिद्धांत नहीं, बाणी उहदे अंदर चल नहीं रही, परमात्मा दी याद उहदे अंदर लगातार चलदी नहीं, कहन लगे उस पुतले नालों वध नहीं है, पुतले वरगा ही है। ते हजूर ने लानिया कह दिता, अनिक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे जिवें डरावना खेत दे अंदर है, इवें ही बंदा है जिन्हें बारों बारों लिबास बनाया है पर उहदे अंदर नहीं है। मैं फिर एक बेनती करा, गुरबाणी दे वचना नूं उलंघ के अर्थां नूं मरोड़ त्रोड़ के करा, ये मेरी ईमानदारी भी नहीं होएगी, ते मैं संगत दा विचोर ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा विचोर होवांगा। क्योंकि जे भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि दर दर वेशी गाखड़ी, ते फिर मैनूं इह अर्थ ते तुहाडे सामने रखणे पैणगे। आप बर्दाश्त करो ना करो, अर्थ ते मैनूं करने ही पैणगे ना इस पंक्ति दे अर्थ। हुण एक वचन मैं गुरबाणी दे अंदरों होर तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरबाणी ए कहिंदी ए कि दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वाशी रास, दिल दर वेशी रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वेशी रास, कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है,
मैं फिर बेनती करा अंदर दी रखवाली मन दी।

0: एक चौक एक राउंड अबाउट भी पार नहीं कर सकोगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे, एक्सीडेंट दी लपेट विच आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि प्रबंध नूं तोड़िया। अगर स्पीड 100 दी जगह ते 200 ते जा रहे हो ते तुहानूं कोई चलन नहीं देगा, नाल दी नाल रोक लेंगे, क्योंकि प्रबंध नूं तोड़िया। कुछ प्रबंध राजनीति ने बनाए ने, उन्हां नूं असी चाहुंदे होए ना चाहुंदे होए भी कबूल करने आ। कुछ प्रबंध साडे मन दी सफाई लई, मन दी सुगड़ता लई, मन दी शांति लई, मन नूं तरतीब करन दे लई कुछ प्रबंध घड़े ने, तैयार कीते ने गुरु साहिबाना ने। ते जिहड़े प्रबंध गुरु साहिबाना ने बनाए ने, उन्हां प्रबंधां नूं असी तोड़ के उलंघन दा यतन करदे आ। ते प्रबंध कोई भी तोड़ोगे प्यारियो, बेचैनी बनेगी, चैन दा जन्म नहीं होएगा। भगत फरीद साहब जी कहन लगे, साई मेरा चंगा कीता। हे साई जी, कीता है तू चंगा, पर करिए कि तेरे चंगे कीते नूं सारे चंगा मन दे ते नहीं ना। जे तेरे सारे चंगे कीते नूं चंगा मन लैन, फिर ते शांति शांति घरां विच बन जाए। तू भावे लख सर्ब गुण संपन्न है, सर्व कला समर्थ है, पर लोकां नूं तागियां दे उत्ते, तवीतां दे उत्ते, टूणियां दे उत्ते, टंजरां दे उत्ते, देहधारियां दे उत्ते, पखंडियां दे उत्ते जिन्ना भरोसा है, हे प्रबंध करन वाले गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरे उत्ते इन्ना भरोसा नहीं है। ते जिन्ना भरोसा तेरे ते कोई रखेगा, उन्ना ही भगत फरीद साहब जी वांगू बलदी हुई अग तों बुझ जाएगा। बलदी हुई अग नूं बंद कर लेगा, उहदे अंदर शांति सहज बन जाएगा। कहन लगे, नहीं तां हम भी दज्जां आहे, नहीं ते मैं भी सड़ बल जाना सी आम लोकां वांग, जे साईं जी दे चंगे कीते प्रबंध नूं मनदा ना। प्रबंध नूं कबूल करो, इहदे अंदर ही साडा सारिआं दा भला है। जो रस्ता सतगुरु सानूं बाणी विचों विखाउण, उस रस्ते नूं अपना लो, उस रस्ते ते चल पो, और चल के वेखो कि मन शांत हुंदा है जां नहीं हुंदा। मैं एक बेनती कह के खिमां दा जाचक होवांगा, जद कोई रस्ते नूं अख्तियार करे ना, रस्ते दे उत्ते चले ना, ते दूर खलो के कही जावे जी इस राह दे उत्ते चलन तों बाद ते कुछ नहीं मिलना, इह ते उहदी अग्ञानता है ना, इह ते उहदा बोलना नरोल झूठ ही बोलना है ना। तुसी कोई 2-4-6 महीने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अनुसार जीवन बतीत करके वेखो, पर गुरु दे अनुसार अपनी मर्जी दे नाल नहीं, ते फिर आण के गल करियो कि कुछ मन दे अंदर शांति बनदी है जां नहीं बनदी। चलना है अपनी मर्जी दे नाल, डॉक्टर दी दित्ती दवाई भी खाई जानी है, ते डॉक्टर ने कहना है कि आलू चावल नहीं खाने, जिन्ने दिन दवाई खा रहा है रोग नहीं जांदा, उन्ने दिन तेरे लिए परहेज है, ना तू आलू ते ना तू चावल खाने, चौल भी नहीं खाने, आलू भी नहीं खाने। उधरों दवाई खाई जावे तो उधरों तिन्ने टाइम ही आलू तिन्ने टाइम ही चौल खाई जाए तो फिर बीमारी तो बचेगा किवें? जिन्ना जरूरी इलाज करना है उन्नी जरूरी नाल परहेज रखना है। तो साईं जी ने जेड़ा साडे भले लई प्रबंध किया है, इस प्रबंध नूं कबूल करन करके मन दे अंदर शांति बनेगी, वरना नहीं। भगत फरीद साहब जी दे सलोक नूं आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सामुख रखन दा नमाना यतन कीता। सतगुरु जी रहम करन, समूह मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अज्ञानता दा हनेरा दूर करन, तमाम हुईयां भुल्लां खामियां लई दास खिमा दा जाचक है।
1: हे प्राण नाथ गोबिंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण

तिस राखु कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, फरीदा जे जाना तिल थोड़े, सम्मल बुक परी। जे जाना शहो नंडड़ा, तां थोड़ा मान करें।

सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों, आप चल रही लड़ी वार कथा भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों रोज रोज सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, भगत फरीद साहब जी दे इन्हां श्लोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सन्मुख रखण दा नमाणा यतन करा। भगत जी दा पहला श्लोक जो अज पढ़ के सुनाए गए, फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ कहिंदे ने अकल वाला, लतीफ कहिंदे ने अकल याफ्ता, ज्ञान वाला, सूझवान बंदा। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, कह लगे जे तू ए कबूल कर रहा है कि मैं समझदार हां, ते फिर अपने वास्ते काले लेख क्यों लिख रहे हैं? अपने वास्ते कालख इकट्ठी क्यों कर रहे हैं? किसी दूसरे नूं बचाउणा ते नंबर दो दी गल, उस तो अगे दी घटना, अपने आप नूं ते बचा। गुरु अर्जन देव साहब सुखमणी साहब दे अंदर इस तरह ही हुक्म करदे ने, जे जानत हौ आपो बचे, जे तू जानदा है कि मैं सूझवान आ, ते फिर अपना आपा विकारां कोलों बचा के विखा, अपने पल्ले नूं संकोच के रख, इनूं चिकड़ दे अंदर भरण ना दे, जे तू जानना है कि मैं सियाना। हर मनुख अपनी अकल दे उत्ते बहुत वड्डा कॉन्फिडेंस रखदा है। हर चीज दूसरे दी प्यारी लग जांदी है, कारोबार दूसरे दा चंगा, जेब दूजे दी धन विच घट भी होवे तां वी लगदा है मेरे नालों ज्यादा, माण प्रभता दूजे नूं वध ना मिल जाए। पर जिथे अकल दी गल आउंदी है, उत्थे ए अपनी अकल दे उत्ते संतुष्ट है, ना अपने तन दे उत्ते संतुष्ट है, ना अपने रूप रंग दे उत्ते संतुष्टी है, ना अपने कुटुंब कबीले ते परिवार दे उत्ते संतुष्टी है। बच्चे कहिंदे ने दूसरियां दे मां बाप चंगे ने, साडे मां बाप चंगे ने, ते मां बाप नूं पुछो कहिंदे ने दूजियां दे बच्चे चंगे ने, साडे बच्चे चंगे ने। मां बाप दी संतुष्टी बच्चियां ते नहीं, बच्चियां दी संतुष्टी मां बाप दे उते नहीं। खिमा चाहांगा, पत्नी दी संतुष्टी पति दे उते नहीं है, ते पति दी संतुष्टी पत्नी दे उते नहीं है, संतोखी ते दोवें ही नहीं। हर गल दे अंदर बंदा ऐ संतोष नजर पैंदा है, संतोख इहदे कोल नहीं, पर जिथे अकल दी गल आउंदी है ना, उथे अपनी अकल दे उते संतुष्ट है, उथे नहीं कबूलदा कि मेरी अकल छोटी है ते दूजे दी अकल सियाणी। चलो किसी मनुख की अकल नूं कबूल करो या ना करो, काम चल जाएगा, ना भी करो कोई गल नहीं। बंदा ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की मत नूं वी छोटिया ही मनदा है, ते अपनी मत नूं वड्डा मनदा है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की मत दे उत्ते संतुष्ट होवे, ते फिर उस मत नूं कबूल ना कर लवे, फिर ते कबूल करन लग्या देरी नहीं। अगर आप संतुष्ट हो गए हो कि सतगुरु तुहाडा ज्ञान वड्डा है, मेरा ज्ञान छोटा है, फिर ते गुरु दे ज्ञान नूं कबूलन लग्यां देरी लगेगी नहीं। अड़चन किस गल दी बनदी है कि जिस तरह मैं अपने जीवन दे अंदर चल रहा, मैं ठीक ही चल रहा, यह ठीक है, कथा चलदी है, कीर्तन चलदा है, गुरु के कीर्तनी है, दो दो घंटे बह के कीर्तन करदे ने, कथा वाले कथा करदे ने, पर इन्हां नूं कई जान दिओ, कीर्तन करी जान दिओ, मैं थोड़ा इन्हां दी गल नूं मनना है। बंदा चलदा है धर्म दे मार्ग दे उत्ते, पर धर्म दे अनुसार नहीं चलदा, अपने अनुसार चलदा है, अपनी मर्जी दे नाल। ते मैं इक होर भी बेनती करदा चला, जिन्ने कु बचन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सानू चंगे लग जांदे ने, उन्ने कु असीं अपना लैने आ, ते जिथे साडी अकल जवाब दे देंदी है ना कि नहीं ये बचन मनन दे योग नहीं, जुबानों कहो भावे ना कहो, उन्हों तुसी कबूल नहीं करदे। इहदा मतलब यह होया कि असीं अपनी मर्जी दे सिख हां, गुरु दी मर्जी दे सिख नहीं हां, असीं गुरु दे अनुसार नहीं चलदे, अपने अनुसार चलदे हां। जिस दिन साडी अकल कम कर जांदी है कि नशा माड़ा है, असीं छड्ड

इच्छा रहया दूर। देख फरीता जेथिया सकर होई बिस, साई बाजों अपने वेदन कहिए किस।

में जी की बिरथा हुए सो गुर पे अरदास कर। कहन लगे लोका दे सामने रोना रोन दी बजाए गुर पे अरदास कर। गुरु सुनना भी जानदा है ते सच जाने, गुरु मटाउना भी जानदा है, तेरे दुख दलिद्र नु कटाउना भी जानदा है। भगत जी कहन लगे हालात तेरी सजना इस तरह दी बन गई है कि तेरे वास्ते मिठे पदार्थ भी जहर दे तुल बन गए, सक्कर होई विस। साहिं बाजो अपने दुनिया दे अंदर तेरी पीड़ा तेरी वेदन नू सुन वाला तेरा अपना कोई रहा नहीं, ते हुण कौन है तेरा अपना जिदे कोलों जन्म लेके मृत मंडल दे कोल आया से। सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा अपना है। साईं बाजो अपने वेदन कही है किस। कहन लगे साईं जी तो बगैर रब जी तो बगैर हुण अपनी वेदन बयान भी करें ते करें भी किन्ना। एक मैं होर बेनती करदा चला, कोक हुंदी है शीतल, शीतल मैंने ठंडी, पर ठंडी कोक नूं बाहर रख दिओ ते समा पा के ना वो बदल जांदी है। ठंडी कोक अपना सुभा बदल जांदी है, उहदी ठंड चली जांदी है, सहजे सहजे वो गर्म होनी शुरू हो जांदी। जिन्ना समा बाहर रहेगी ठंड तो फ्रिज तो बाहर रहेगी गर्म होएगी। ए दूसरी उदाहरण जो मैं देनी चाहना, खिमा करो, शराब जिन्नी पुरानी हो जाए ना, जिन्नी पुरानी, मैं इतिहासकारां दे बोल पड़े, उन्ना उदा नशा वध जांदा है, उन्ना नशा वध जांदा है, म्यार वध जांदी है। जे मनुखी मन दे अंदर रब्बी रस ना आए, ए शराब वर्गा ही बनिया रहे, जहरीला बनिया रहे, कौड़ा बनिया रहे, ते बुढ़ापे तक पहुंचदिया पहुंचदिया ए होर माया दी पकड़ विच आ जांदा है। शराब वांग इहदा नशा वध जांदा है, विकार वध जांदे ने, गुणा वध जांदे ने, घटन दी बजाए रब वल आउण दी बजाए सगों उल्टे पासे नूं जांदा है। ते मैं भाई साहब भाई रविदास गुरदास साहब जी का एक बचन पढ़िया, उन्होंने बड़े आलमाना ढंग दे नाल एक बोल किया, कहन लगे कि अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिसता वे। कहन लगे अन्ना होया दिसना बंद होया, बोला होया सुनना बंद होया, पिंगला होया चलना बंद होया। अन्ना बोला पिंगला तन थका, तन ते तेरा गया है थक, मन तह दिसता वे, मन अजे भी काले कहां वांग दसा दिशावां नूं दौड़दा है। ये हुण तुसीं अपने उत्ते अजमा के वेखो, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का बचन वह झूठ कह रहे ने जां सच कह रहे ने, ते जदों अपने जीवन विच ए बचन नूं कटा के वेखोगे नजर आ जाएगा भाई साहब जो कह रहे ने हकीकत ही कह रहे ने, सच्चाई बयान कर रहे ने, झूठ नहीं। खैर भगत फरीद साहब जी का अगला बचन मैं एक होर इस श्लोक दे नाल संबंधित तुहाडे सामने रखदा चला। कहन लगे फरीदा अखी देख पतीनिया, पतीनिया का मतलब हुंदा है थक जाना, पतलियां हो जाना, कमजोर हो जाना। अखां वेख वेख के थक गईयां ने, कमजोर हो गईयां ने, पतलियां पै गईयां ने। सुन सुन रीने कन्न, ते सुन सुन के तेरे कन्न भी कमजोर पै गए, वह भी घस गए। मैं एक होर कबीर साहब जी का बचन इस तो पहला तुहाडे सामने रखा। कबीर साहब कहिंदे ने कबीरा राम ना चेत्यो जरा पहुंचो आए। कहन लगे राम तो चेत्या नहीं, जरा तेरे कोल पहुंच गया, बुढ़ापा तेरे कोल पहुंच गया। अगा कहिंदे ने लागी मंदर द्वार ते अब क्या निकसो जाए। कहन लगे द्वार, द्वार मैंने दरवाजा, मंदर मैंने घर, मंदर दे दरवाजे उते, घर दे दरवाजे दे उते लग जाए अग, ते उस दरवाजे विचों ही ते सब कुछ बाहर कढ़ना सी, हुण बाहर कढ़ेगा कित्थों दी, आप निकलना है दरवाजे विचों, दरवाजे दे भांबड़ बल रहे, जे समान कढ़ना सी दरवाजे विचों ते दरवाजे ते अग बलदी नजर आ रही। कहन लगे हुण करेगा की, हुण बाहर कढ़ेगा की। बुढ़ापे दे अंदर आण के इहदे तमाम दरवाजिया नूं अग लगी हुई अजे भी नजर पैंदी है। अखां दे वेखण दी तमन्ना बाकी, कन्नां दे सुनण दी अजे चाहत बाकी है, जुबान बोलना चाहुंदी है, दंद चबाउणा चाहुंदे ने, अजे खाण दी मंग है, जीवन दी मंग है, पर अजे भी रब वाले दा ध्यान नहीं है, अजे भी परिपूर्ण परमात्मा चेते विच नहीं है। कहन लगे अखी देख पतीनिया, सुन सुन रीने कन, शाख पकंदी आया,
ਜਿਵੇਂ

मिठियां रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बारों मेरे सिर दे उते बची हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना ये नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिए है। इते सब नो पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नू वसदा रसदा वेखना चाहुने आ मन साफ चाहिए है। ये किसे विरले विरले नू पता है, सब नू नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओह वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सां नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे प्रिय पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है, बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, ਇਹ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਏ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਉਤਰਸਕੇ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇਸਾ ਗੋਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਕੜ ਲਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਫ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧੁਪੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਣਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮੁਕ ਸੋਚ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਸ਼ਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ ये मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्होंने बधाई देन दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैरे मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह की फसल का बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी है मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहणियां कटदे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहणी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगी ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नावें कह रंग, धुप जाएगी मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नावें कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चला, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना। सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ए मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उत्ते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रिहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, वे सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तों बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम ए आना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनु चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम ए आना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनु अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स दी बीमारी दा इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर दा चाहिदा है, बहुतियां शरीरां दा नहीं चाहिदा, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुन्ना, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या को सवेर दा कीता काफी है, या को हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सा, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नालों, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनूं कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनूं आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो, पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनूं आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हां। उस तो पहला ने जे तन मैला है ते असीं अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गलवकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चला। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैन कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उते दाग, ते मन दे उते दाग कादे लगदे ने? मैलियां कर्मां दे। मन दे उते दाग कादे लगदे ने? मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उत्थे आउणा है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरापन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर ये लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनू वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। ये जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर ले, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध अंदर होर भी करदा चलां। साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण, शरीर विचों निकलण वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असीं ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैण दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर यह दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नू साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नूं धोण वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ ते ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उत्थों मन धोवा के वापस ले आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ ते ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी, तां ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला कीता है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणां विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के वो तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के, बर्दाश्त नहीं होगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन के घर के अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना के अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, तो परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है? अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे

जानते कि जो सुन रहे हो जो सुना रहे हो इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना, इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना। प्यारे इन्हां नुक्तियां नू अपने जीवन के अंदर अपनाओ अगर जीवन नू रोशन करना चाहते हो। गुरबाणी का फरमान है, मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन हच्छा ना होए। कहन लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नू धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते, कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करित है, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है। कपड़े बुन रहे ने खड्डे दे उत्ते बह के, निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया, बाहरी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उस समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उत्थे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज भरे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर ये बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निपग, कोई हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज भरे बोलां दे अंदर गल कह दिती, कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि कित्थे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुच्चा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमे झूठे जाहे भी झूठे, झूठे है मरे अभागे। कह लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओ भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल भरे, जा रहे ने झूठ दे नाल भरे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा ये दसता ते जा के जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो, सारा जोर मन दे उत्ते दियो। मन दी सफाई वल ध्यान दियो ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नू जन्म देंदे ने, उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणां नू वेख के, सुहप्पन नू वेख के, नक्शो निगार नू वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नू वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखी मैनू लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नू साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नू वेख के। ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों भी नफरत है। दूजे तों नफरत करदे हो, जे कोई तुहानूं पुछे भी क्यों, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ।

रब ना पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पी

आदमी के है मगर आदमी कहा। वो कहिंदा आदमी विचों आदमीयत मरी हुई नजर पै रही, इंसान विचों इंसानियत मरी नजर पै रही। शाये आदमी के है मगर आदमी कहा। ते गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे ने करतूत पशु की, तेरा कर्म तेरी करतूत तेरा सुभाव पशु वाला है, मानस जात जात तेरी मनुख वाली है, इनू छड़ेगा ते गल बनेगी वरना नहीं। पशु पुणे नू पशु सुभाव नू पशु बिरती नू अंदरों मारना है धर्म दे राह दे उत्ते तां चल पाओगे वरना नहीं। तो अपने विषय नाल जुड़ो। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि दूसरे दा चंगा कारोबार वेख के, भोजन मकान कपड़ा कार अडंबर वेख के अपने मन नू ना ते ईर शालू बना ते ना अपने मन नू तरसा के मेरे कोल नहीं है। तू कर्म करना है, कर्म करना तेरा फर्ज है। तेरे कर्म नू वेख के निरंकार तेरी झोली दे अंदर दान कदों बख्शदे ने, ए निरंकार दी मर्जी, अज बख्शन कल बख्शन। मैं एक उदाहरण कह के खिमा दा जाचक होवां। भोजन खाना साडे वस विच है, खाते हुए भोजन दा खून साडे शरीर नू किन्ना चाहिदा है? एक कतरा चाहिदा है, दो कतरे चाहिदे ने? उहदा भोजन दा खून बनाउणा ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਬਣੇ। ਚਾਰ ਛਕੋ, ਦਸ ਛਕੋ, ਅੱਠ ਛਕੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलना, चंगे कर्म करने, उदा चिंतन करना, उदा जाप करना, ए साडे वस विच है। ओ त्रुट के ओ रस कदों बनाउंदा है, मन कदों टकाउंदा है, ए ओदी खेड है, ओदे वस विच है। आपां अपना कर्म करदे चलिए, ओदी गल ओदे उत्ते रहिंदी है। ओ कदों साडे ते मेहरबान होएगा, कदों मन दौड़दा होया टिक जाएगा, ए परमात्मा दी रहमत दे नाल होएगा। तो भगत फरीद साहब जी दे इन्हां श्लोकां नूं आधार बना के जो मैं आप संगत दे सन्मुख बेनतियां कर रहा सां, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन सब दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी रोशनी बख्शन। अज ना

तन सुहागन नाओ सवरे पेय कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे।

कंतय गम यथ नानक सो सोहग्नि जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए

कहो कबीर हम राम की अंश, ते जे राम दी अंश उत्ते विश्वास नहीं ते राम उत्ते विश्वास कित्थों आएगा। जे परमात्मा तो विछड़ी हुई एक बूंद उत्ते विश्वास नहीं ते परमात्मा ते विश्वास किवें बनेगा। अगर सागर दी लहर दे उत्ते भरोसा नहीं ते सागर दे उत्ते भरोसा किवें बनेगा, किवें मन्नांगे कि सागर हुंदा है। आत्मा तो विश्वास उठता जा रहा है, नाल लगता परमात्मा तो भी विश्वास उठता जा रहा है। अज दी सदी दे अंदर ज्ञान याफ्ता सदी दे अंदर, खैर जो मैं बेनती करनी चाहुंदा सी, आत्मा करके असी चल रहे हां, बोल रहे हां, वस रहे हां, कमा रहे हां, खा रहे हां, अमीर हां, गरीब हां, आत्मा करके। गुरबाणी का एक फैसला हुंदा है, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। तन दा अखरी अर्थ इत्थे है शरीर। आखिया जिन्ना समा तेरे शरीर दे अंदर आत्मा चल रही है, आत्मा वस रही है, साथी नाल है, उन्ना समा तू चल भी रहा है, कमा भी रहा है, गा भी रहा है, कारोबार कर रहा है, तू चंगा है, तू बुरा है, दुनिया विच तेरा वजूद कायम है। जिस दिन परमात्मा दी अंश आत्मा तेरे विच नहीं रहेगी, उस दिन तेरा शरीर राल बन जाएगा, खाक दे बराबर बन जाएगा। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया, साथी उठ के चला गया, आत्मा उठ के चली गई, तां तन खाकू राल, ए शरीर खाक बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। उस दिन तो बाद चलना, बोलना, कमाउना, वेखना, विचरना, यह सब कुछ नहीं होएगा। आत्मा कारण है। हुण आत्मा नूं यह शरीर छड़ना पिया। आत्मा आई सी परमात्मा दे देश तो, परमात्मा तो विछड़ के, परमात्मा दे अंश। बड़े ध्यान नाल इस नुक्ते नूं समझण दी कृपा करियो। आत्मा नूं परमात्मा दा देश मिलिया नहीं, शरीर छड़ना पिया, फिर वह आत्मा जाएगी कित्थे? सोहरे टोई ना लहे पेये ना ही थाओ, वो आत्मा जाएगी किथे? आत्मा दे कोल शरीर भी नहीं रहा, शरीर किसे कारण करके या एक्सीडेंट करके या बुढ़ापे तो बाद शरीर ते छड़ना पिया। अगे है परमात्मा दा घर, परमात्मा मिलिया नहीं, तो ए आत्मा फिर विचकार पटकेगे। समझन वास्ते में समझ लो थले शरीर है, उत्ते परमात्मा है। समझन वास्ते हुण परमात्मा मिलिया नहीं, शरीर छुट गया है, वह आत्मा कित्थे जाएगी? वह आत्मा भटकेगी, जिन्हों पंजाबी दे अंदर आपां कह दिंदे आ फलाने दी रूह भटक रही है, फलाने दी आत्मा भटक रही है। ते जिस रूप विच आत्मा दा भटकना असी मन रहे हां, गुरबाणी उस रूप विच नहीं मनदी। वह आत्मा कित्थे भटकदी है? फिर दोवां दे विचकार चल रहा है इक चक्कर, ते वह चक्कर चल रहा है 84 लख जूनियां दा चक्कर। ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਦੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਦੀ ਨਭ ਚਾਰੀ, ਕਦੀ ਥਲ ਚਾਰੀ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵ, ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਮੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।

एक होर प्रेम है उन्हों कहिंदे ने आत्मिक पद्धर दा प्रेम। मैनू सारिया दे अंदर परमात्मा दी आत्मा नजर आए, पहला मैनू परमात्मा दी अंश अपने विच, ओही परमात्मा दी अंश सारिया दे अंदर। ते जद आत्मिक पद्धर दा प्रेम बनदा है तो फिर सारिया दे अंदर खुदा दी होंद भी महसूस होनी शुरू हो जाती है, जो मेरे विच है तेरे विच है। की फर्क पैंदा है, तेरे शरीर दा रंग किस तरह दा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने, तू किस जात धर्म मजहब दे अंदर जन्म लिया है, की फर्क पैंदा है। गल ते ए है कि मिट्टी दे भांडे ने कुमार ने बनाए ने, तेरा रंग काला कर दिता है, मेरा रंग चिट्टा कर दिता है, तेरिया अखा दा आकार थोड़ा वधा दिता है, मेरा छोटा कर दिता है। की फर्क पैंदा है कि तू एक नगर दे अंदर जन्म लिया है, तू दूसरे नगर दे अंदर जन्म लिया है, मिट्टी ते के। तो खैर आत्मिक पत्र दा प्रेम ए सर्वोत्तम प्रेम है। आत्मिक पत्र दा प्रेम करन वाले ए नहीं वेखदे इहदा रूप रंग नसल जात भेद की है, वो वेखदे ने आत्मा मेरे विच, आत्मा ही इहदे अंदर। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, निरंकार जोबन जांदा है चला जाए, जोबन जान दा डर नहीं है, पर मैं ए चाहना कि कम से कम इस जोबन दे अंदर ते खुदा तेरी होंद मैनू नजर आए, इस जोबन दे अंदर ते मेरा प्रेम उच्चा बन जाए। बड़े जोबन मेरे गए ने शरीरां दे नाल प्रेम कर करके, बड़े जोबन गए ने, एक जोबन नहीं, सुख गए कुमलाए कितनी जोबन, किन्ने जोबन, किन्ने जोबन गए ने मेरे अज्ञानता दे अंदर पटकद्या पटकद्या, टकरा मारद्या मारद्या, किन्ने जोबन चले गए ने। मैं जात पात दे बंधन दे अंदर बजदा रहा, मैं ईर्षा द्वेष दे झगड़े उठाउंदा रहा, निंदा चुगली दे अंदर चलदा रहा, ते जोबन खिसकदा रहा। समय ने ते नहीं टिकना, समय नू तुसी संभालना है, संभालो समा तां वी अपनी चाले चलदा है, समय नू ना संभालो समा तां वी अपने चाले चलदा है। अज दा दिन आया है, चार पैर दा जीवन लैके इन्हें बीत ते जाना है, किसे दा दिन सुकून दे अंदर ते किसे दा दिन रोंदिया धोंदिया बीतेगा, किसे दा दिन हानि दे अंदर किसे दा दिन लाभ दे अंदर बीतेगा, दिन ने बीत जाना। गया होया दिन वापस लिया के मुड़ तो इनू खर्च करना, इनू सवारना, ये साडे वस विच नहीं है। गया सो गया, इनू वापस मोड़ना साडे वस विच नहीं है। तो समा जोबन दा जेड़ा आया है इन्हें चला जाना है, जोबन दे समय दे अंदर अपने बाकी फर्ज पूरे करो। गुरु साहिबान रोकदे नहीं है, गुरमत वरचदी नहीं है, पर जेड़ा तुहाडा अपने लई फर्ज है वह भी पूरा करो। पातशाह सानू केवल चेता ही करा रहे हैं। और भगत जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। बड़े वारे जीवन मिलता रहा, एते कर हम बहुत बसाए, तब हम राम गर्भ होए आए। बड़ी वारे जीवन मिलिया, जोबन मिलिया, पर जोबन चला गया। भगत रविदास साहब भी ऐलानिया अरदास कर रहे ने खुदावंद करीम दे सामने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ते हुण जन्म मिलिया ते जोबन ते मिले गए, कदी चलो मिल गया कदी ना मिलिया, पर समझण वास्ते कह लिए जोबन बड़े मिले। भगत रविदास साहब भी मिलदे जुलदे लफज वरत रहे ने, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निकी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, भगत फरीद साहब जी की रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक, दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है।

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

एक उत्तम पंत सुनेहौ गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। परम सम्मान योग शब्द गुरु परमेश्वर जी दा खिरदा स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हफ्तावरी जो विशेष दीवान सजदे ने अमृत वेले तो हजूर दी कृपा ले रहे हो, जो इस गुरु घर दी निता प्रति दी ए मर्यादा बन चुकी है। अमृत वेले सिमरन गुरुदेव जी दे बख्शे हुए नितनेम उस तो उपरांत इलाही गुरबाणी दा कीर्तन संपूर्ण आशा दीवार आप जी ने अज सरवण कीती। उस तो उपरांत इलाही बाणी दा कीर्तन होया। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर कर देन और आप साध संगत आशीष बख्शो, जो पिछले दो हफ्तियां तो आपां ने भाई साहिब भाई गुरदास हुरां दी वार नूं आधार बनाया सी कि गुरु के सिख दे लक्षण की ने, गुरसिक्खी दी निशानी की है। ते पिछे आपां विचार चुके हैं भाई साहिब दे कुछ बचन कि धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलै निवाण नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहु रंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी, तत्ता होवै धुप विच छावै ठंडा विरती हानी, तपदा पर उपकार नूं ठंडे पर उपकार विहानी, अगन विहाए अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवै बिलम न आनी, गुरसिखी दी एहो निशानी। भाई साहब दे बचन आपां इतों तक वाचे सन, सिख विच निम्रता पानी दी तरह, सिख निवान नूं जांदा जिवें पानी नीवें पासे नूं तुरदा। ते असी तीसरा लक्षण विचारिया सी कि गुरु का सिख जिहड़ा वो अपने अंदरों ते बाहरों निर्मल है, जिवें पानी निर्मल है इसे तरह सिख भी जिहड़ा वो निर्मल है। अगे जिहड़े आपां अज कुछ पॉइंट वाचने ने जां विषय पानी शीतल है ते गुरु का सिख भी शीतल है। पानी जिहड़ा वो हर एक नूं शुद्ध कर दिंदा है, वो सब दी मैल धो दिंदा है। ते गुरु के सिख विच भी मेरे गुरु नानक ने इन्नी कु कृपा कर दिती, ए भी मैले मना नूं जे किते गुरु का सिख होवे पूरन उहदे कोल बह जाण ते मैलियां नूं निर्मल कर दिंदा है। जिवें पानी हर एक नूं अपने वल्लों सुख दिंदा है, हर एक रंग विच रज जांदा है, बनस्पति दे हर रुख दे अंदर पानी है, ते गुरु का सिख भी हर एक दे नाल मिलाप रखदा है।

नानक दर सरिता परम सम्मान योग जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो। अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो सरवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो। करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी होरां ने कीर्तन की समाप्ति से जो अमृत बचना का कीर्तन सरवण कराया है धन गुरु अमरदास महाराज हजूर के मुख तो उचारण की हुई अमृत बाणी रामकली राग अंदर आनंद साहब की एक पौड़ी का कीर्तन आपने सरवण किया है। ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले सरवण भी करते हो पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे ने। पहला बचन ते किता ने कि आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए। शब्द वरते है सच्ची बाणी नू ते नाल कृपा कीती भी जदो कोई सच्ची बाणी नू गाएगा अपनी रचना दे नाल इस तो तुल इस तो उच्ची होर कोई बाणी नहीं ते जदो भावना नाल इस गुरबाणी नू कोई गांदा है ते गुरबाणी सुन नाल गाउण नाल ओदे खिरदे नू अमृत दी दात मिलदी। शब्द आपने सरवण कीता आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो के आओ प्यारे गुरु के सिखो इकट्ठे होइए

है पी सच नानक होशी पी सच नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो दिखम

अमृत नाम हृदय मह दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बहराही,

चारा प्रभु मेरे का बड प्रताप जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लहिए बलहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज किन्ने भागां वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपां अलविदा कर देना है ते उस 1999 नू जी आया कहना जिसका खास करके सिख जगत के अंदर बड़ा चाह ते उमा दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर अज ओ भी लोग होणगे जेडे नशे विच गुट होणगे जेडे नच टप रहे होणगे पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोग इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने मेरे साहब तू अपने नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा कुर्बान जाइए उस गुरु तो जिन्हें सानू बाणी दिती जिसने कृपा करके सानू साध संगत दिती जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दिती नाम दी दात दिती ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नू तक एक गल कही सी कि गुरु कोल भी केवल ओ बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है जां जो गुरु नू इश्क करदा है ते उत्थे तां ही हजूर ने कहा सी कि कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास गुरु मेहरामत करे मैं अर्थ कर रहा अपने उस प्रसंग नू वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे हैं गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जां खास करके मेरे बुजुर्ग बैणीवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 दा ओ साल भागां वाला आ रहा है अज तो 300 साल पहलां आनंदपुर केसगढ़ साहिब जिथे अज साडा तख्त है उस पहाड़ी दी चोटी ते खलो के हजूर ने हिंदुस्तान दे उच जातियां नूं ते जालम हाकमां नूं एक गल कही सी।